0: Hey guys, this is me Gurashi Singh and that is Tejinder Singh and I really hope हमारे ये नया पंजाबी वेडिंग मैशअप आप लोगों को पसंद आया हो
1: और अगर आपको ये मैशअप पसंद आया तो don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel.
0: The link is down below. Subscribe.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल गंगापुर सिटी। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के साथ। अभी आपने सुना फिल्म संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को यहीं विदाई देते हुए आपको लेकर चलते हैं हमारे फेवरेट और मनपसंद आपका अगला कार्यक्रम हल्लू फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: अशोक मीणा।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं तुम जी?
0: स्वाई माधोपुर।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मासूम शर्मा।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।
3: सौरभ मीणा।
2: सौरभ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी से।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: मासूम शर्मा का।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी सुनवाई करता हूँ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
2: सलमान।
1: सलमान जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: हसरत।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर हसरत।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस,
4: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
4: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।

0: चाहते।
1: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: जी नाम बताएं।
4: चौधरी आज कर रहा हूँ।
3: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते रेडियो डीएस से?
4: गाना तो बढ़िया है जी। देखो
3: सर
4: गोरे बदन से कुर्सी।
3: जी
4: गोरे बदन से कुर्सी
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर। हेलो

0: हेलो
1: सर नमस्ते।
0: जी, नमस्ते। नाम बताएं सर आपका।
1: सैयद खान पुराने नंबर।
0: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दुनिया जब जलती है आयरन वाला मजा
0: जी, कौन सा गाना है?
1: दुनिया जब जलती है आयरन बड़ा मजा आता है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताओ।
3: गुलशन।
2: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी।
2: पता है मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: लड़की क्यों न जाने की लड़कों की नहीं होती।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश कैसा हूँ?

0: का तौलिया कहीं फर्श पे, टूथपेस्ट का ढक्कन कहीं, कल के मोजे उलट के पहने, वक्त का कुछ भी होश नहीं।
1: जीने का तुमको ढंग सिखलाते हैं, तुम्हें जानवर से इंसान।
2: जी नाम बताएं।
3: शिवम।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: थम थम करते गले में जब निकले।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से।

0: सर।
1: यस मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: चेंगम।
0: गाना बताएं सर।
1: एक कटोला जेल के भीतर एक कटोला जेल।
0: सुना रहे हैं सर आपकी सरकार।

0: बताए।
1: फेज खान
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नशे कॉलोनी।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: धुन है।
0: है जी धुन।
1: हाँ
0: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश। धुन सुन

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नाम बताए सर।
1: आर्यन वेणा
0: आर्यन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सोंदरी से, मीणा
0: गाना बताए सर। जिस
1: जी की मीणी आ गई।
0: टॉप का भाव गिरा दी, बिल्कुल
1: हाँ
0: सुना रहे हैं सर आपकी।

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए सर।
0: देवांशु मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सिमापुर सिटी।
1: गाना बताएं सर।
0: लाल परी।
1: सुना रहे हैं सर।

0: जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन।
4: जी नाम बताएं।
5: ऋतिक मावर, नसिया कॉलोनी से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: प्रेरण।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: हेलो जी, नाम बताएं।
1: राजेश्वरी मीना।
0: राजेश्वरी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: कौन?
0: कहाँ से बात कर रहे हैं राजेश्वरी जी? बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: रूप दी रानी।

0: कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए सर। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बंगापुर से।
0: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बिगनिंग स्पीच।
0: हाँ जी,
1: बिगनिंग स्पीच
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नाम बताइए सर।
2: राहुल।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर से।
0: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: रशियन बंदाना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पर ये सॉन्ग रेडियो डीएस में बोल के।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: आशा मीना।
1: आशा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: करौली।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सैयारा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर, ये सैयारा सुन।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डी।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: विवेक।
1: विवेक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: प्रज्ञा हॉस्टल गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हेलो,
0: चेली चेली।
1: कौन सा गाना है सर?
0: चेली।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.5 नाइन

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: नाम कपिल।
0: कपिल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तुम्हें देख के ही सांसें चलती है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे।

0: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता है।
0: गुप्ता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरा गांव मेरा देश में सोना ले जा रहे, चांदी ले जा रहे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी शिकायत।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: केशव प्रजापति।
1: केशव जी कहाँ से बात कर रहे
0: हैं?
1: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गाना में होने वाले
2: दोस्तों, वक्त हो चुका है 11:05 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फॉर माई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: नाम बताए सर। रोहित वर्मा जी बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताए सर।
1: मैं आपका पुराना रेडियो दोस्त फिलोदा से बात कर रहा हूँ।
0: आपका शुभ नाम क्या है
1: सर? रामजीलाल।
0: रामजीलाल जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ओ सनम।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: नीलू भाई ठाकुर।
0: नीलू भाई जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हो?
1: वो है ना आया है मेरी मजबूरी, दर्द दर्द रखे नौकरी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश।

ये नाम बताएं। कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते, नाम बताए सर आपका।
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिल्लू खेड़ा से।
1: तुलसीराम जी बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत ना मैंने करनी थी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: हेलो
1: जी, नाम पता है?
0: कोमल,
1: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताए मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना।
1: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ही गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:35 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो DS पर।

0: हेलो हेलो
1: जी, नाम बताएं। हम
0: रफीक खान बोल रहा हूँ सर।
1: सब कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: रंगापुर सिटी लोक मस्जिद के पीछे से। गाना
1: गाना बताएं सर।
0: छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश है।

0: हेलो मीना सर जी, कार पर सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल, नाम बताएं सर आपका।
0: मैं काजी पिंड मौर खुर्द जटका बठिंडा पंजाब से जगजीत मत्तू बोल रहा हूँ सर जी।
1: जगजीत जी बहुत अच्छे हैं हम, आप कैसे हैं ये बताएं पहले तो।
0: सर जी बहुत वधिया, तुसी दसो जी घर परिवार सोडे मम्मी पापा जी बाल बच्चे सारे ठीक है जी।
1: सर बहुत अच्छे हैं सर, बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
0: सर जी अपनी बेटी पलक बेटा को भी मत्तू फैमिली मौर वालों ही सत श्री अकाल बुला देना बेटी नु जी।
1: जी बिल्कुल।
0: सर जी मेरे मान योग बड़े भरा धर्मपाल जी कथा कीर्तन करते हैं जी, ते जी उन्हां दी फरमाइश है जी फिल्म हैगी है जी धर्मवीर साहब जी।
1: धर्मवीर का कौन सा गाना है?
0: मैं दसदा हूं जी, हम बंजारों की बात मत पूछो, किशोर कुमार जी का गाया हुआ जी, भैन लता जी का जी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे।
0: ठीक है सर जी, प्यार ते सत्कार भरी दोबारा सत श्री अकाल करता हूं जी।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सवाई माधोपुर तकेरी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये भीरूगा।
0: ओके सर, सुना।

0: नमस्ते मैम, मैं गंगापुर सिटी से बोल रही
1: हूँ। जी मैम, क्या है? नमस्ते,
0: सुनीता नाम है मेरा।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन से गाना सुनने को?
0: दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानो।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: हाय, मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: Hello.
4: Hello.
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: पूजा मीना।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: सिंगापुर।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: सही आ रहा।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: आरंभ है प्रचंड।
1: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंड।

किसी की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों?

0: हेलो,
1: हेलो
0: नाम बताइए जी।
1: सतीश,
0: कशिश कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रेलवे स्टेशन कहने
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: को।

0: सुनते रहिए दिल से अकेले 9.6 DSFM पे।
1: ओ ख्वाहिश नहीं तेरी जदों मर्जी पूरी कर लवे, ओ ख्वाहिश नहीं तेरी एक गल तू पल्ले बन जाने, ये पल्ले बन मेरी ओ होर होणगे जिन्हां नूं तू पैरां विच रखदा है। मैं प्यार हां तेरा,

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.
2: पर ऐसे गुस्से आ तेरे नाल अड्डा बंदा हो गया तू। सानू एक्टर नहीं लवेगा आपकी फिल्म च
3: हैं? वाह, तुसी तो बहुत वधिया एक्टिंग करते हो।
4: ये

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, बज तो चुका है 1:00 इस वक्त। आप मेरे साथ टोन का 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों, एक गाने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आदिवासी दिवस के बारे में।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आदिवासी स्वदेशी समुदायों के अधिकारों, संस्कृति, परंपराओं और योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आप एफएम रेडियो आदिवासी दिवस 10 मिनट की एफएम रेडियो तो आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा एफएम रेडियो और मैं लेकर आई हूं विश्व आदिवासी दिवस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है? ये दिन दुनिया भर के आदिवासी और स्वदेशी समुदायों की संस्कृति, परंपराओं, भाषा, कला और उनके अधिकारों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? आदिवासी समुदाय सदियों से अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं के साथ जीवन जीते आए हैं। उनकी अपनी भाषाएं, लोकगीत, लोक नृत्य, रीति रिवाज, कला और जीवन शैली होती है। विश्व आदिवासी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि विविधता हमारी ताकत है। अलग अलग समुदायों की परंपराएं और संस्कृतियां मिलकर हमारे समाज को और समृद्ध बनाती हैं। प्रकृति से जुड़ाव आदिवासी समाज के जीवन में प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जंगल, जल, जमीन, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ उनका गहरा संबंध रहा है। आज जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो प्रकृति के प्रति सम्मान और उसके संरक्षण की कई पारंपरिक सीखों से भी प्रेरणा ली जा सकती है। हम सभी के लिए संदेश साफ है, प्रकृति हमारी जरूरत है, केवल संसाधन नहीं। इसलिए पेड़ पौधों और पर्यावरण की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। संस्कृति और लोक कला। आदिवासी समुदायों की लोक कला और लोक संस्कृति बेहद समृद्ध है। उनके लोकगीत, नृत्य, चित्रकला, हस्तशिल्प और पारंपरिक वाद्य यंत्र उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी जरूरी है ताकि आधुनिकता के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित रहे। हमें ये विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ एक समुदाय को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि ये हमें सम्मान, समानता और आपसी सहयोग का संदेश भी देता है। हमें किसी भी समुदाय को उसकी भाषा, पहनावे, इस परंपरा या जीवन शैली के आधार पर कम नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति और हर समुदाय की अपनी पहचान और गरिमा है। श्रोताओं के लिए एक छोटा संदेश। इस खास दिन पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने देश की हर संस्कृति और हर समुदाय का सम्मान करेंगे। हम अपने आसपास की लोक कलाओं, लोक भाषाओं और परंपराओं को जानने की कोशिश करेंगे और पर्यावरण की रक्षा में भी अपना योगदान देंगे, क्योंकि संस्कृति का सम्मान, प्रकृति का संरक्षण और सभी के प्रति समान व्यवहार, यही एक बेहतर समाज की पहचान है। तो आज विश्व आदिवासी दिवस पर सभी आदिवासी समुदायों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा एफएम रेडियो।

इसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

लिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली बिसरी याद 89.6 रेडियो DS पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
5: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
6: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस।

दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम बैक भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वर 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फला। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। आप थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

और दोस्तों वक्त हो चुका है 4:04 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: हाँ जी सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: नमस्ते पलक जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ महावीर जी से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना तो रेडियो डीएस के लिए सुपर हिट लाए हैं।
0: हाँ जी बताइए।
1: देखिए, पैरों में बंधन है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: शादर सप्रेम प्यार है, नमस्कार
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं? मौसम तो ठंडा हो गया आपके यहाँ, हमारे यहाँ 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है
1: सर। यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, वैसे बारिश की थोड़ा मौसम बन रहा है शाम का।
0: जी जी, बहुत ही खुशी की बात है और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपके यहाँ मौसम इतना खूबसूरत सुहाना है।
1: हाँ सर, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर और गाने के बोल हैं, मनुमा रे मनुमा लागे रे लागे रे शाम रे मनुमा।
1: सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लू खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरी पलकों में काजल।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: यू वेलकम सर।

0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: यू वेलकम सर। हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: आरबी गुजर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: सिंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: तेरी याद याद याद।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैं
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हम तो वही जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
2: नाम अमन मीणा।

0: सागर है ना सागर।
1: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: नाम अमन मीणा।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: हम गंगापुर सिटी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मीणा हाई कोटा आदिवासी दिवस।
2: ओके।
3: सुनते रहिए दिल से DSFM पे।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
5: 9.6 पे कौन
4: रेडियो DS।

0: कोमल गुर्जर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: राणा जी मां।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आप? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गुंडे भी फाइनल करें।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: प्रदीप सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कॉलेज वाड़ी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जय इस छोरे गल ना सेटिंग हो जा
1: जी साजा, छोरा तो घना एंडी है।
2: न्यू बता, सेटिंग कितनी क्लियर है?
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
5: 89.6 पे
4: रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हाँ जी मैम।
1: ओए छोटू की कह रहे थी तू ऑस्ट्रेलिया चला गया?
0: थोड़ी होने वाली नूनू मिलना आया सी। आ जूंगा परसों।
1: बेटा तेनू पता तो है अपने इत्थे ब्याह तो पहले मिलना ठीक नहीं।
0: चंगा संताली वाले हो, कहता रहा कि आ जूंगा मिलके।
1: हाँ
0: जी मां पहुंच गया।
1: चल जल्दी आ जी घरे।
0: आ जूंगा परसों। चंगा।

ते तेरी जिंदगी दे विच दिन आखरी है मेरा, आज तो बाद तेनू कदे चेहरा देखना नहीं मेरा। मैं इश्क कीता सी ते तू वपार कीता सी, गलती तेरी नहीं गलती ता मेरी सी, क्योंकि तू नहीं मैं तेनू प्यार कीता सी।

0: पर असी गुस्से हाँ तेरे नाल। बड़ा बंदा हो गया तू। सानू एक्टर नहीं लवेंगा आपकी फिल्म च?
1: वाह, तुसी तो बहुत वधिया एक्टिंग करते हो।

इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बडिया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में सुकून नहीं है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो टीएस कंगा फोर सिटी का तड़का। मेरे आपका रेडियो दोस्त आकाश और आप सुन रहे थे न्यूज सॉन्ग। और अब चलते हैं, समय हो चुका है 7 बज चुके हैं और अब चलते हैं वजन संध्या की ओर।

0: अक्खा मीच अक्खा मीच।
1: की होया?
0: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा।
1: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: पर असी गुस्से हाँ तेरे नाल। बड़ा बंदा हो गया तू। सानू एक्टर नहीं लवेंगा आपकी फिल्म च?
1: वाह, तुसी तो बहुत वधिया एक्टिंग करते हो।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।